0: Celebrating your favorite occasion. East FM.
1: Kenya's premier
0: Asian mix.
1: Asian mix.
2: की खातिर मर गया राजा छोड़ के तख्त हजारा
3: सो व्हाट
2: और हीर ता फिर दी शॉपिंग कर दी
3: बिग डील डूड
2: हीर ता फिर दी शॉपिंग कर दी दिन भर सेक्टर सतारा भाई दिन भर सेक्टर सतारा
3: ओ मैन
4: हो मैनू नी चाहिदा कोई राजा
3: चल झूठी
4: नारा छे दी यारी धीरे मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा
3: हाय चुकला रब्बा मैनू
4: मैनू ते चढ़िया चा फैशन